0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: हिन हफ़्ते जो असांजो जेको सवाल आहे अव्हां खे ज़रूरु नोट कराईंदासीं ऐं उमेद त अव्हां तयारु हूंदव। त असांजो जेको सवाल आहे, अॼु जो सवाल आहे त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे। जी हा, असांजो अॼु जो सवाल आहे त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ऐं कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे। ऐं तव्हां असांखे इन सवाल जो सही जवाबु ॾींदो असांखे इनबॉक्स में ॾेई सघो था। जेके दोस्त प्रोग्राम पंहिंजो पहिरियों दफ़ो ॿुधनि था या जंहिं बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे, त असां उनखे इनबॉक्स में मैसेज करण जो तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो, उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो, उन बाद पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं तव्हां सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888 ते सेंड करे सघो था। जेकी दोस्त असांजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया फेसबुक ते, त असांजे फेसबुक जी ID आहे GFM 88 जी ID ते। फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां पंहिंजो नालो, पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था। ऐं असांजे तव्हां मोबाइल नंबर ते बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था। मोबाइल 10 बजे स्टूडियो में ऑन थींदी। असांजो नंबर आहे 0332132288। जी हा, 0332132288। असांजो अॼु जो सवाल आहे इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कहिड़ी तारीख़ ते कहिड़े महीने में मल्हायो वेंदो आहे। साईं जा ख़ुशी, ॾुख, उल्फत, प्यारु, नफ़रत, इहे सभु मौसमनि जा नाला आहिनि। इहे मुख़्तलिफ़ मौसमूं असांजी दिलि, दिमाग़ ऐं रूह ते असरअंदाज़ थींदियूं आहिनि। ज़िक्र कयल मौसमनि जो को ख़ासि वक़्तु कोन्हे, कंहिं वक़्तु बि बिना कंहिं इतलाह जे अची कड़कंदियूं आहिनि। इन्हनि मौसमनि जे बदिलजण में कॾहिं कॾहिं साल लॻी वेंदा आहिनि, त वरी कॾहिं कॾहिं ॾींहं, कलाक ऐं मिंटनि में बि मटिजी वेंदियूं आहिनि। ख़ुशी, ॾुख ऐं प्यारु हर दिलि जो महबूब मशगिलो आहे ऐं इहे मौसमूं हक़ीक़त में अंदर जा आलाप ऐं अहसास आहिनि, जंहिं इंसान जी दिलि में उल्फत जो ख़ज़ानो समायल आहे। उनखे हर हंधि इज़त मिले थी ऐं ॿियनि जे दिलनि में पंहिंजे लाइ वसीउ जाइ पैदा करे थो।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में मां तव्हांखे हिकिड़ी मालूमात ॾींदुमि, जेके अखियुनि मां ॻोढ़ा बहनि था त उहे असांजे लाइ केतिरा फ़ाइदेमंद आहिनि या असां लाइ नुक़सानकार आहिनि। तव्हांखे अखियुनि मां ॻोढ़नि जे हवाले सां मालूमात ॾींदासीं त अखियुनि मां वहंदड़ ॻोढ़ा अखियुनि आलो रखण में मदद ॾियनि था, जंहिंसां अखियुनि मां खुश्की ऐं साड़ो ख़तमु थींदो आहे ऐं ॻोढ़ा अखियुनि मां दस्त, धूड़, मिटी ऐं ॿिया ज़रड़ा कढी अखियुनि खे साफ़ कंदा आहिनि ऐं ॻोढ़नि में लाइज़ोज़ाइम नाले हिकु केमिकल हूंदो आहे जंहिंमें एंटी माइक्रोबियल ख़ासियतूं हूंदियूं आहिनि, जंहिंजे करे उहो केमिकल अखियुनि खे इन्फेक्शन खां बचाईंदो आहे। ॻोढ़ा अखियुनि जे मुख्य हिसे कॉर्निया खे ऑक्सीजन ऐं गिज़ाई जुज़्ब फराहम कंदा आहिनि। रोइण वारो अमल दॿाउ वारे हार्मोन्स जहिड़ोक कॉलेस्ट्रोल जे नाली नेकालीअ में मदद कंदो आहे, जंहिंजे करे रोइण सां राहत ऐं सुकून जो अहसास फराहम थिए थो ऐं ॻोढ़ा वहण जहिड़ी केमिकल जी नेकालीअ खे मुतहरक कंदो आहे ऐं जेको मूड खे बहितर करे ॾुख या का बि तकलीफ़ खे घटाइण जो सबबु हूंदो आहे। मतिलबु त ॻोढ़ा तकलीफ़ ऐं ॾुख घटाइनि था। जज़्बाती तौरु वहंदड़ ॻोढ़ा आमतौर ऐं पाण मुरादो तौरु वहंदड़ ॻोढ़नि खां मट हूंदा आहिनि, यानी अलॻि हूंदा आहिनि, छो त उन्हनि में दॿाउ वारी हार्मोन्स ऐं ज़हरील मवाद जो मक़दारु वधीक हूंदो आहे ऐं रोइण सां उन्हनि मादनि खे ख़तमु करण में मदद मिलंदी आहे। ॻोढ़ा वहण सां असाबी निज़ाम फाल थींदो आहे, जंहिं सां जिस्म खे आराम मिलंदो आहे ऐं जिस्मानी सूर घटिजण में वॾी मदद मिले थी। ॻोढ़ा अखियुनि खे साफ़ सुथरो रखण ऐं उन्हनि जी चमक बरक़रार रखण में बि मदद कंदा आहिनि, जेको अमल वरी डिघी ऐं तेज़ नज़र जे लाइ तमामु फ़ाइदेमंद आहिनि। ॻोढ़नि में मौजूद ऐं ॿिया प्रोटीन अखियुनि खे कुदरती तौर ते महफ़ूज़ रखंदा आहिनि, जंहिंसां इन्फेक्शन जा ख़तरा बि घटिबा आहिनि। ज़हरीली बैक्टेरियाज या जीत वग़ैरह जे नुक़सान खां बि हिफ़ाज़त थींदी आहे ऐं इहे एॾा फ़ाइदा ॿुधण खां पोइ तव्हां थोरो अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं कंहिं बि सबब जे करे इंसान जे रोइण वारो अमल कुदरती तौर ते न थिए हा त अखियुनि जे सिहत लाइ केॾा न कशाला करणा पई वञा। त साईं जा अखियुनि मां ॻोढ़ा वहण बि तमामु वॾा फ़ाइदेमंद आहिनि, के ख़ुशी मां ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, के ॾुख मां वहंदा आहिनि, के जीत या अखियुनि में का शइ पइजी वेंदी आहे पोइ बि ॻोढ़ा वहिजी वही वेंदा आहिनि, पर हमेशह ॻोढ़ो अंदरि जी ॻाल्हि हूंदो आहे। कॾहिं बि ईअं ख़ाली रोइण सां ॻोढ़ा न वहंदा आहिनि, जेकॾहिं माण्हू अंदरि सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि, जेकॾहिं दिलि सां रोईंदो त बि ॻोढ़ा वहंदा आहिनि।

ਸਮੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਆਏ त असो अज जो सवाल है त इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। जी हा समिन, इंसानियत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे। तव्हां असांखे इनबॉक्स में बि सवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था, फेसबुक ज़रिए बि तव्हां असांखे सवाल जो जवाबु मोकिले सघो था, ऐं असांजो मोबाइल नंबर आहे 0333221322888 ते बि तव्हां पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु असांखे मोकिले सघो था। त समिन, हिन वक़्तु असांजे स्टूडियो जे घड़ियल में पंहिंजो 10 पिया थियनि। असां वरी हिन वक़्तु हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जे हफ्ते में एक बेरो मुलाकात है पुटन साहब बेरा टेलीफोनिक गाल बोल करण जो हुकुम सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करण बाबत बुधनी जो लिखत में हुकुम जारी करे छड़ियो। अदालत चयो आहे ते कैदी के जेल में होजन बावजूद इंसानी वर्ताव ए जरूरी तिबी सहूलतन जो हक हासिल आए। पीटीआई बानी जी सेहत बाबत जान सियासी फायदे ला इस्तेमाल न करे सकबी। बानी जे इलाज दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में को भी अवामी मेड़ न थींदो। हुकुम जी भंजकड़ी ते डिनल सहूलतूं फौरी तौर वापस वठी सकजन थियूं।

पीटीआई बानी जे जेल खां अस्पताल मुंतकली बाबत सुप्रीम कोर्ट जे फैसले ते जीअं जो तीअं अमल करण जो ऐलान कंदड़ हुकूमत जो यूटर्न फैसले खिलाफ़ अपील दाखिल करण जो ऐलान कानून वारे आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त पीटीआई बानी जे अदालती हुकुम जो नए सिर जाइज़ो वठण लाइ अदालत सां राब्तो कयो। जेलनि में केतिरा ई क़ैदी आहिनि जिन सां सिहत जा मसला आहिनि, छा सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम सभिनी क़ैदियुनि लाइ हूंदो? कानून मूजिब मेडिकल बोर्ड फ़ैसिलो कंदो आहे त क़ैदी जो इलाज जेल अंदरि या ॿाहिरि करणो आहे। उन खां अॻु वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो त पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण बाबति सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जीअं जो तीअं अमल कयो वेंदो। वज़ीर आज़म वटि अदालत जे फ़ैसिले जे उकतड़ को बि इख़्तियार नाहे। राणा सनावला बि चयो त सुप्रीम कोर्ट मेरिट ते फ़ैसिलो ॾिनो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न? अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

साईं जा चवंदा आहिनि त पाणी हेठां ईंदे ईंदो आहे ऐं पाण खां ताक़त वारे जे मथां कावड़ चढ़ंदी न आहे ऐं पंहिंजो जेको हेठां वारो माण्हू हूंदो आहे ग़रीब मिस्किन हूंदो आहे उन तां कावड़ लहंदी न आहे। पर अक्सर ॾिठो वियो आहे त मर्द जेके हिन पंहिंजी कावड़ जेका आहे उहा औरतुनि ते कढंदा आहिनि। पोइ सबबु खणी कहिड़ो बि हुजे, जेकॾहिं ॿाहिरां जी कंहिंसां बि अणत बणत थींदी तॾहिं बि घर जी कावड़ औरतुनि तां कढंदा, चाहे उहा धीउ हुजे, ज़ाल हुजे, अमड़ हुजे या भेण हुजे। मर्द जे हर हकी तोड़े नाहकी कावड़ जो शिकार बि औरत थिए पई ऐं मामूल खां मामूली ॻाल्हि कावड़ में अची कंहिं वॾे नुक़सान ते बि माण्हू पहुची सघे थो ऐं ग़लति इहा ॻाल्हि हुजे त बि का पंहिंजो मुआशिरो बहरहाल असांजे मुआशिरे में औरतुनि सां ॾाढ बदसलूकी, तशदुद ऐं मौत जहिड़नि वाक्यनि जो बुनियादी कारण कावड़ आहे। रवैयनि जो बुनियादु समाजी अण बराबरी ते आहे ऐं समाजी अण बराबरी जो बुनियादु जाहिलाणा रवैयनि, सोच ऐं रस्मनि ते आहे। जेकॾहिं समाज जी हिकिड़ी लॻातार अमल सां पंहिंजो ठहिया आहिनि त ग़ुलाम रवैया, सोच, ग़ुलामी जी तवक कंदा। इहो तसलसल हज़ारे सालनि जो आहे। उनखे ख़तमु करण लाइ हिकु त समाजी निज़ाम जो औरत मर्द जे फ़र्क़ खां सवाइ पिणु मज़हबी अक़ीदनि खां मथां बराबरी जी बुनियाद ते कानून ऐं इंसाफ़ ते बीठल हुअणु ज़रूरी आहे। ॿियो सॼो समाज जो तालीम याफ़्ता हुअणु घुरिजे त असां जेके हिन कावड़ वारी जेका जिहालत आहे ऐं ख़ासि करे असां इहा कावड़

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85-69
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-33-85-69
5: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे
3: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GA FM 94

ऐं मौसम हवाऊं तमामु बहितर लॻनि पियूं ऐं जेको कांव आहे उहो काफ़ी ॾींहनि खां निसरी चिटो बीठो आहे ऐं उहा जेका चिट आहे उहा ख़तमु थी चुकी आहे। सुभाणे थधिड़ी जा जेका ॾींहं आहिनि उन में काफ़ी निशानियूं हूंदियूं आहिनि। थधिड़ीअ में ईअं बि हूंदो आहे त पंहिंजो जेको आहे मच्छी जेका फसलनि मां निकिरी करे ऐं उहो पाणी में ईंदी आहे शाखुनि में, शाखुनि मां वॾनि वाहनि में ऐं केनालनि में, बेराजनि में, यानी मच्छीअ जो हिकिड़ो चाढ़ बि थींदो आहे। बहरहाल थधिड़ी पवण जूं काफ़ी घणियूं निशानियूं आहिनि। पोइ इहा आहे मौसम चिट भॼण जी ऐं गर्मी ख़तमु थियण जी, पर गर्मीअ जो अञा ॾींहं पिया आहिनि, काफ़ी चिटूं अञा पोइ ते आहिनि। बहरहाल जेका हिन वक़्तु 20 अगस्त ते पंहिंजो चिट भॼे पई उहा कांह जी, ऐं असां जेको सवाल नओसीं उहो 19 अगस्त जो हुयो, इंसानियत जो आलमी ॾींहुं। कहिड़ी मौसम हुजे, कहिड़ो बि ॾींहुं हुजे, तव्हां कोशिशि कयो, ख़िदमत कयो इंसान ज़ात जी।

जी हाँ, समय न अवां जे इंतज़ार जो घड़ियूं ख़तम, जेको अवां असांखे टाइम ॾिनो ॿिनि कलाकनि जो, ऐं तव्हां असांजो वेही प्रोग्राम ॿुधो, अवां जा लख कुर्ब। त समय ने असांजे अॼु जे सवाल जो सही जवाबु हो, इंसानत जो आलमी ॾींहुं कॾहिं मल्हायो वेंदो आहे, त इहो आहे 19 अगस्त। ऐं असांखे दोस्तनि जिन बि पंहिंजो सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे, उहे दोस्त हुनजा नाला खणंदा हलूं। उस्ताद ग़ुलाम नबी सुमरो ऐं उज़ेर सुमरो मीराणी चांडन खां, ऐं फतेह अहमद कनासरो, फारूक अहमद, फराज़ अहमद कनासरो, बेबी शुगफ्ता नाज कनासरो, घोट सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां, हाफिज़ नईम लाइ, हाफिज़ अमीन लाइ काज़ी सुमराणी ईंदड़ पनवाकिल खां, अज़ीज़ सोलंगी, भुटो सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ास खां, सोराब मंगरियो ॻोठ सचे ॾिणो मंगरियो लॻ बकापुर खां, हाफिज़ मुनीर अहमद खोसो लाड़काणे खां, ख़ालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ास खां, ऐं महरम अली टामरी ॻोठ सिजावल जूणे जो लॻ हुनजो ॻोठु आहे, लियाकत खखराणी उन सां गॾु आहे, अंबर बुरड़ो, दिलबर बुरड़ो लाड़काणे खां, नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, भाउ जे बि सवाल जो जवाबु सही हो, मोहम्मद शरीफ़ छुटो दरेजी बलोचिस्तान खां, क़ुर्बान ख़ासकेली झंडे मरी खां, चनेसर बेहण आज़ाद बेहण शहर मोरे खां, फौजी पठाण खोसो ऐं मोहम्मद कासिम पहंवर फुलजी स्टेशन खां, इमाम बख्श सोलंगी मटियारी खां, अब्दुल गनी जूणे जो सुल्तानपुर खां, फहद लाशारी, आशिक़ ख़ासकेली मोहम्मद अली जमाली हिज़बुल्लाह जमाली नवाबशाह खां, बरकत अली जमाली अली हसन जमाली ॻोठ हाजी ग़ुलाम नबी जमाली बलोचिस्तान खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हाले पुटरा स्टाप मीरपुर ख़ास खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी, ॻोठ मोलिर निमाशी लॻे वॾनि मरण खां, ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख्तियार अली ऐं ज़हीर अब्बास सोलंगी वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, मोहम्मद कासिम चांडियो ॻोठ खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, हसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां, एजाज़ अली जूणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां, फ़ौजी इरशाद अली महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई, निसार अली जतोई, हरसा जी गढ़ी कोरकाणनि खां, सूमर फ़क़ीर कोरकाणी। त समिन अवां दोस्तनि जे नाम कयूं पिया ख़ूबसूरत नगमो।

0: जी हाँ समिन प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पंहिंजे पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इनशाला वहां सां मुलाकात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान
1: मोरो नौशहरो।

0: ऐं घोट की वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि बिटो क़तल जवाबदार मुड़ुस ज़ाल ऐं नौजवान खे गोलियूं हणी फरार थी विया। घोट मलूक शेख में जवाबदार खावन बख्श शेख ज़ाल मलूका ऐं नूर हसन शेख खे क़तल करे छॾियो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वियो। पुलिस पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003885569।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न? अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

मौजूद हैं, बिल्कुल टिप टिप से कूल एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं। पूरी पूरी एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, क्योंकि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है सारी रहेगा पूरी पूरी एक बजे तक। और वो तमाम तो लोग जो लोग यहाँ सालगिरह है उनको कहेंगे मनी मनी हैप्पी रिटर्न सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार है उनको कहेंगे गेट वेल सून। वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बना कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस। इसके अलावा मेरी आवाज सीजन गलियों और शोजारों शहरों शराहों वादी और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों चोरी बड़ी कारों मेरे बरसदारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम अहलन व सहलन मरहबा बखैर अगले जी आयानु सर बिस्मिल्लाह बाजार शाहनी हाउ एंड वेलकम टू जिंदगी गुलजार है। प्रोग्राम में बहुत कुछ होगा, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करेंगे वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना सुनेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज रुखसार. आप लोगों ने मुझे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. आप लोग तीन तरीकाकार से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहला तरीकाकार है सिंपली मैसेज करने का. तो सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा जी FM88 के नाम से फेसबुक के ऊपर. ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर ये पेज आप देख सकते हैं. इसके ऊपर मिलने वाली पहली वाली पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुलजार है की. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे और आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स जो कि आना मुझे स्टार्ट हो चुकी हैं. हमारा सेगमेंट सर लगा गाना सुनाओ, जिसमें आप लोग कॉल करेंगे, एक अदद गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो. ओके जी, आज फिर से आवाज को कोई इशू है मेरे ख्याल से. या हेलो.
1: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम. हेलो
1: हेलो,
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: हेलो.
0: ओके जी, आवाज इनको भी नहीं आ रही है. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. सो गाना सुनाएंगे मुझे एक अच्छा सा. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन बात कर रही है?
2: मैं
0: ज़ैनब
2: बात कर रही हूँ. जैनब?
0: जी हाँ. जैनब पहली दफा कॉल कर रही है?
2: जी हाँ, पहली दफा कॉल कर रही
0: हूँ. प्रोग्राम सुनती है?
2: कभी कभार.
0: कभी कभार सुनती हैं? चले, जबरदस्त गाना सुनाना है कोई
2: गाना. मैं सुनाऊंगी, आप हंसोगी, मैं नहीं सुनाऊंगी.
0: नहीं, मैं नहीं हंसूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी, पक्का
2: नहीं. एक
0: मरतबा
2: मैंने एक आरजे को सुनाया था, वो इतना हंस रहे थे ना, उसके बाद
0: मैंने कभी किसी को नहीं सुना. मैं हंस रही थी? नहीं, एक आरजे दूसरे थे. नहीं, मैं नहीं हंसूंगी, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं नहीं हंसूंगी.
2: अगर आप गाना सुनाएंगी
0: मुझे, तो मैं कौन सा गाना सुनाऊं? जो आपको गाना आता हो.
2: मुझे तो बहुत आते हैं.
0: बहुत आते हैं, चले उन बहुत में से एक गाना सुना दे.
2: बातें प्यार सब बकवास सब सुने, आना मेरे पास मेरे दूसरे से इज्जत आई मेरा सब पीछे पीछे आए, दारू ना मैं बात तेरा नखरा उठाए, चेहर घुमाए तो क्या प्यार क्या होता तुझे करके दिखा, दिए टूटे तो टूट टूट गई मुझे लूट, जब बॉन्ड में करूँ तब झूठे पे झूठ तेरी आंखों में है धोखा, तीर है खोखा अब तो बात बात तुझे जो है धोखा.
0: वाह, सब
2: लेते वे लेते चाहिए
0: क्या बात है.
2: हेलो,
0: क्या बात है जी, क्या बात है. कौन सा गाना है ये? पाकिस्तानी गाना है?
2: हाँ, पाकिस्तानी गाना है. राहत फतेहली और वो दूसरे पता नहीं कौन सा, मुझे याद नहीं आ रहा.
0: अच्छा, राहत फतेहली. इस गाने का नाम क्या है, नाम पता है आपको?
2: नहीं, बस दूसरा चला, मैं दूसरा सुनाऊंगी.
0: कोई भी सुना दूं अच्छा सा. चले, मैं फिर अच्छा सा गाना आपको सुना रही हूँ. थैंक यू सो मच ज़ैनब, अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज. और ज़ैनब के लिए हम राहत फतेह अली खान का एक अच्छा सा गाना प्ले कर

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: का हमारा सेगमेंट इस वक्त चल रहा है और मेरे साथ मौजूद है एक और कॉलर. हम चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम मिसेस अली, किधर
1: आपकी दुनिया में आपकी बातचीत में जी रहे हैं और थोड़ा सा बिजी थे इस वजह से हाजिर नहीं हो पाए.
0: कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रही हैं आप?
1: प्रोग्राम अभी जॉइन किया है.
0: गाना सुनाएंगी?
1: हाँ सुनाऊंगी.
0: सुना दे.

तुझको साथी तेरे

0: ओके, किसको डेडिकेशंस हैं?
1: जानू
0: हाँ
1: मैंने
0: जी,
1: थोड़ा गला खराब था ना, तो इसी वजह से थोड़ा इधर उधर फिर हो गया,
0: इधर उधर
1: इधर
0: मुझे मुझे तो
1: उधर
0: नहीं लगा कि इधर उधर हुआ है।
1: हाँ वो जरा ना गला खराब था ना, वरना मैं बहुत सुरीली हूँ
0: नहीं,
1: जानू
0: अभी भी आपने कम मतलब बुरे सुर नहीं लगाए, काफी अच्छे सुर लगाए।
1: हालांकि सो मच
0: थैंक यू सो मच, आपका गाना प्ले कर चुकी हूँ, सुने, एंजॉय करें अपना, बहुत सारा ख्याल
1: अल्लाह
0: रखें।
1: हाफिज़ जानू।

0: और कॉलर लेने जा रहे हैं और कॉलर हम चेक करेंगे कॉर्नर कहाँ से है नेक्स्ट. हेलो हेलो
1: लाड़का से लियाकत अली बात कर रहा हूँ.
0: लियाकत अली भाई कैसे ठीक ठाक
1: अल्लाह का करम.
0: अच्छा मुझे बताएं
1: कैसी हैं. ठीक है
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं गाना सुनाएंगे.
1: जी जी
0: सुना दें.
1: एक बार मिलो हमसे तो बार मिलेंगे हम जैसे कहाँ तुमको तलब कार मिलेंगे. एक बार मिलो हमसे.
0: ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट कर रहे
1: हैं. मेरी प्यारी बहना आज जी रुख साथ.
0: ओके जी थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.

अभी जिन लोगों ने मैसेजेस और कमेंट्स कर दिए हैं उन लोगों के हम मैसेजेस और कमेंट्स को भी जरूर इंक्लूड करेंगे. तो मैसेजेस और कमेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे. तो जिन लोगों ने हमें कर दिए हैं वो थोड़ा सा सब्र कर लें, हौसला कर लें, ठीक है. और हमें जिस गाने की रिक्वेस्ट आई है वो हम प्ले करेंगे साथ साथ. और इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक और फिर हम दोनों को दोनों के बाद वापस आएंगे. क्या हो गया मुझे, दोनों के बाद वापस आएंगे. और फिर जब हम दोनों के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बोलो तो माने. बोलो तो माने में एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे. तो गाना गाने के साथ न्यूज प्लस फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

अॻूणे वरे वज़ीर क़ाइम अली शाह जी नियाणी निगत शाह जे रिटायरमेंट खां अॻु मुदे में टे साल वाद वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ दरख़्वास्त रद्द।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स्ड गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा जगह जो जारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4056 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-83।

0: वालेकुम
1: अस्सलाम, कौन कहाँ से?
0: सफदर
1: बलोच भाई टंगटसर सुना बोलेंगे?
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो बोले
0: कहर की काली कंगी कमरे के किसी कोने से खिसक गई।
1: अरे वाह, जल्दी जल्दी कहना है।
0: काली कंगी कमरे के किसी कोने से खिसक गई, कहर की काली कंगी कमरे के किसी कोने से खिसक गई, कहर की काली कंगी कमरे के किसी कोने से खिसक गई।
1: ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
0: नहीं, और कुछ नहीं कहूंगा।
1: ओके फिर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।

0: It's 12:30 p.m. This time to
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आही
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94

0: अभी तक जिस जिसने टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा बोला है उन्होंने अच्छा अच्छा बोला है और किसी ने अच्छा अच्छा नहीं बोला है. तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कैसे.
1: सागर भाई ठीक है मैम.
0: ओके सागर भाई, प्रोग्राम सुन रहे हैं.
1: जी मैम सुन रहा हूँ, तभी तो कॉल की है.
0: चलें जबरदस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो मुझे बताइए कि टंग ट्विस्टर सुनाए, भूलेंगे.
1: टंग ट्विस्टर क्या है? टंग ट्विस्टर मैम,
0: टंग ट्विस्टर में आपको कहना ये है कि कवल की काली कंघी कमरे के किसी कोने से खिसक गई.
1: हेलो, कवल की काली कंघी.
0: हाँ, कमरे के किसी कोने से खिसक गई.
1: सही है, कमरे के. सही है.
0: यस.
1: तो ये गा के सुनाना है?
0: गा के सुनाए, बोल के सुनाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है.
1: कवल की काली कंघी कमरे के किसी कोने से खिसक गई. कवल की

0: ओके वेरी नाइस, क्या बात है जी, क्या बात है. नया गाना आया है मार्केट में और सागर भाई ने गाया है. चले जबरदस्त, कुछ और बोलेंगे.
1: नहीं मैम, दूसरा प्रोग्राम आपने शुरू नहीं किया है.
0: वो शुरू करवाएंगे एफएम वाले तो मैं करूंगी ना, मैं खुद से करने थोड़ी बैठ सकती हूँ.
1: अच्छा अच्छा,
0: है ना.
1: नहीं आई
0: जी,
1: ऑफर नहीं आई.
0: ऑफर ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर. ठीक है
1: चलो, डी को रख दो, एफ को काट दो.
0: चले जबरदस्त, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. ये थे स्वीट कॉलर सागर भाई, जो मेरे दूसरे शो का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से. अच्छा साथ साथ कॉमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं. काफी टाइम से हमने कॉमेंट्स और मैसेजेस को रीड नहीं किया है, सो कॉमेंट और मैसेजेस आप लोगों के जो कि मुझे रिसीव होते हैं जा रहे हैं बहुत सारे. तो सबसे पहले हम चलते हैं जी मैसेजेस की तरफ. तो मैसेजेस हमें कर दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, और हमेशा की तरह हमें मैसेज किया है सफदर बलोच ने. सफदर बलोच का मैसेज हमें रिसीव हुआ है और ये भी मिसिंग पार्ट है. सो साथ साथ हम कमेंट्स की तरफ भी मूव करते हैं जी. कमेंट्स हमें कर दिए हैं, नूर हुसैन तनी हमें सुन रहे हैं, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, थैंक यू. स्टार अली अब्लो हमें सुन रहे हैं जी, एफएम 88 वारन खे मुंजी तरफा रबी अव्वल, जो महीने जून मुबारक हो, थैंक यू सो मच आपको भी. सलमा नाज हमें सुन रहे हैं, सलमा मुजम्मिल फैजान फ्रॉम लिया, वेलकम टू द शो सलमा. नजीर खोसो हमारे साथ मौजूद है सोबरपुर बलूचिस्तान से. इसार अली अब्दुल हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच. अब्दुल रज़ाक हमें सुन रहे हैं, नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं जी, नजीर खोसो का बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके साथ साथ

ख्याल से हम एक गाने की तरफ चलते हैं, और वो जो एक गाना मैं सोच रही हूँ कि मैं प्ले कर दूँ, तो वो होगा ये वाला सॉन्ग जो कि हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. और जब भी आप कुछ प्ले कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है कि वो जो गाना है ना वो प्ले हो जाए, तो फिर हम उसे सुन पाएं. तो ऐसा कुछ इसी के साथ हम चलते हैं जी आगे, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और लास्ट में वापस आ चुके हैं जी. टाइम भी बहुत लिमिटेड है, लास्ट लकी कॉलर्स की तरफ भी चलेंगे. एंड लास्ट एंड लकी कॉलर कौन होंगे 03000113488 के ऊपर. और आज का जो सेगमेंट रहा है बोलो तो माने, जिसमें टंग ट्विस्टर बहुत अच्छा अच्छा बोला है. एक तो किसने बोला है, सफदर बलूच ने बोला है और सागर भाई ने बोला है. तो सफदर बलूच और सागर भाई आप दोनों हैं आज के सेगमेंट के विनर. ठीक है,

0: तो इसी के साथ लास्ट लकी कॉलर भी एंटरटेन करते हैं और चेक करेंगे कि जी लास्ट लकी कॉलर कौन होंगे 03000113488 के ऊपर. लास्ट एंड लकी कॉलर. हेलो हेलो. ओके जी, आवाज क्यों नहीं आ रही. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं. मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं कौन कहाँ से बात कर रहे हैं.
1: सलमान बात कर रहा हूँ. मैं सलमान बात कर रहा हूँ खैरपुर से.
0: सलमान खैरपुर से बात कर रहे हैं. सलमान पहली दफा कॉल कर रहे हैं.
1: जी जी, पहली दफा ही मैं कॉल कर रहा हूँ. आप तो कैसी हैं. प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे है. बहुत अच्छा शो है आपका.
0: थैंक यू सो मच. और सलमान मुझे ये बताइए, प्रोग्राम सुनते हैं वैसे आप.
1: जी
0: प्रोग्राम सुनते हैं हमारा.
1: जी जी जी, प्रोग्राम बहुत मैं सुनता हूँ, लेकिन खामोश लिस्टर हूँ मैं.
0: खामोश लिस्टर हैं. खामोशी आज तोड़ने का ख्याल कैसे आया वैसे.
1: हाँ, वैसे आपको कोई गाना सुना तो मैं आवाज में.
0: आप गाना सुनाना चाहते हैं.
1: जी जी, थोड़ा ही गाना है बस.
0: सुना दें.
1: काली काली जुल्फों के फंदे नदा.
0: अरे ये क्या हो गया, कॉल ड्रॉप हो गई है सलमान की. और जैसे उन्होंने काली जुल्फों के फंदों की बात की है, एक फंदा कॉल पे भी आ गया. वेरी बैड. हमने तो इनसे आज की अच्छी बात भी नहीं पूछी.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अटारनी कानी कानून साजी बाबत ब्रीफिंग डिनी जरिए मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी अज पार्लियामेंट हाउस में पार्टी के अगवाणन अपोजिशन लीडर से मुलाकात कंदो।

0: ईरान पारां चिकताण वधण जी सूरत में यूरोप में अमेरिकी फौजी असासन ते हमला करण ते गौर। बरतानवी अख़बार टाइम्स ईरानी हुकूमत जे ज़रियनि बाबति रिपोर्ट में लिखियो आहे त ईरान चिकताण वधण जी सूरत में ॾखण ऐं ओभर यूरोप ऐं बल्गारिया समेत यूरोप जे ॿियनि इलाइक़नि में मौजूदु फौजी असासन ते हमला करण लाइ गौर करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दमनि मूजिबि जवाबी कार्रवाई जी नोयत ऐं शिदत बाबति हिकमत अमली तयारु कई वेंदी। गडि॒यल अरब इमारतनि जो ईरान सां वापार ख़तम करण जो ऐलान। गडि॒यल अरब इमारतनि जे परडे॒ही वज़ीर चयो आहे त अमुन सलामती ऐं इलाक़ाई चिकताण खे नुक़सान पहुचाइण सबबि कयो वियो आहे। हुन खां अॻु गडि॒यल अरब इमारतनि जे दिफ़ा वारे वज़ीर ईरान तरफ़ां 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर कया विया। ईरान गडि॒यल अरब इमारतनि जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। ही रवैयो सुठे पाड़ेसरी जे असूलनि जे ख़िलाफ़ आहे। ईरान सां बैकडोर चैनल ज़रिए ॻाल्हियुनि जी दावा करण बाद अमेरिकी सदर पंहिंजे बयान तां फिरी वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां के बि ॻाल्हियूं न पयूं थियनि ऐं न ई ॻाल्हियूं शेड्यूल थियल आहिनि। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां अॻे बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई वई। अमेरिकी सदर आबन हर्मुज़ खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर्मुज़ बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ ते शेयर कयो। तज़िया निगारनि ऐं ईरानी क़यादत पारां वॉशिंगटन जे ॿिटे मयार ते तनक़ीद।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 1.5-4-6-9-12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

ओशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहराब 03003858569

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: गडियल अरब इमारतन जो ईरान सां वापारी खत्म करण जो ऐलान। गडियल अरब इमारतन जे परडे वजीर चयो आहे त अमन सलामती ऐं इलाक़ाई चिकदाण खे नुक़सान पहुचाइण सबब कयो वियो आहे। हुन खां अॻु गडियल अरब इमारतन जे दिफ़ा वारे वज़ीर ईरान तरफ़ां ॿ बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर कया विया। ईरान गडियल अरब इमारतन जो इल्ज़ाम रद्द करे छॾियो। ईरानी परडे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। हीउ रवैयो सुठे पाड़ेसरी जे असूलनि जे ख़िलाफ़ आहे। ईरान सां बैकडोर चैनल ज़रिए ॻाल्हियुनि जी दावा करण बाद अमेरिकी सदर पंहिंजे बयान तां फिरी वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां के बि ॻाल्हियूं न पियूं थियनि ऐं न ही ॻाल्हियूं शेड्यूल थियल आहिनि। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां अॻु ई बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई वई हुई। अमेरिकी सदर आबन हरमुज़ खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबन हरमुज़ बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ थी शेयर कयो। तजिया निगारनि ऐं ईरानी क़यादत पारां वॉशिंगटन जे मिठे मयार ते तनक़ीद। हिकु भेरो ॿीहर फ़ौजी एक्शन खां सफ़ारतकारी जो वक़्तु अची चुको आहे। असां ते दॿाउ विझण सां अमेरिका रियायत हासिल नथो करे सघे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालेबाफ़ चयो आहे त अमेरिका उहे रियायतूं हासिल करणु चाहे थो जेके इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती यादाश्त नामे में आहिनि। पेडेक्स ऐं पंहिंजे औक़ात खां वधीक ॻाल्हाए रहिया आहिनि। मश्करनि जी टीम करिश्मो नथी ॾेखारे सघे। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज बुगटी जी अफ़ग़ान सदर में मुलाक़ात। सरफराज बुगटी सदर खे बलूचिस्तान जे मजबूत सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾिनी। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त बलूचिस्तान में अमुन तरक़ी ऐं अवामी फलाह लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत असराइती राब्तनि जी ज़रूरत आहे। परॾे सरपरस्तीअ में सरगर्म दहशतगर्दनि खे बलूचिस्तान जी तरक़ीअ में रंडक विझण जी कोशिश हर क़ीमत में अदा करणी पवंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि समेत चार ॼणा क़तल। घोटकी जे ॻोठु मलूक शेख में जवाबदार खावंद बख़्श शेख पंहिंजी ज़ाल मलूका ऐं नूर हसन शेख खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे फ़रार थी वियो। ठठे जे इलाइक़े जमपीर में साली घरू तकरार तां भेणवीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। ॻोठु लाल बख़्श मंछरीअ में साहिब ॾिने मंछरी भेणवीअ इमदाद खे क़तल कयो आहे। बदीन जे फिरदोस कॉलोनीअ में जवाबदार यूसुफ मला पंहिंजी ज़ाल खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो।

0: सीटी डी ऐं सास इदारनि जी कराची में कार्रवाई। जश्न आज़ादी जे मौके ते फायरिंग जे वाके में मुलविस टिनि दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। DIG सीटी डी कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 12 अगस्त ते डिफेंस फेज़ 2 में फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल कयो। गिरफ़्तार थियलनि में ज़फ़र अली फराज़ ऐं सजाद शामिल आहिनि। अॻोणे वॾे वज़ीर क़ाइम अली शाह जी नियाणी निगत शाह जी रिटायरमेंट खां अॻु मुदे में 3 साल वाद वारे फ़ैसिले ख़िलाफ़ दरख़्वास्त रद्द। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस अदनान अलकरीम मेमण दरख़्वास्त न ॿुधण जोॻी क़रार ॾींदे रद्द करे छॾी। वकील चयो आहे त दरख़्वास्त गुज़ार गायरी शोबे में प्रोफेसर लाइ हक़दार आहे। प्रोफेसर जी मुक़ररीअ लाइ इश्तिहार बि जारी थी चुको हो ऐं मुक़ररी जो अमल बि जारी हो। अदालत चयो त सूबाई काबिना अवामी मुफ़ाद तालीम ऐं तहक़ीक़ी बहितरीअ लाइ डॉक्टर निगत शाह जी मुक़ररीअ ते गौर करण जी हिदायत कई। दरख़्वास्त आहिनि जे आर्टिकल 199 तहत ॿुधण जोॻी न आहे। सिंध में क़ौमी शाहराहनि मोटरवेज़ जी ख़राब सूरतहाल ते सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी अदालत पुॼाणो कयो त कोटली कबीर में हादसे में फ़ौत थियलनि वारे मामले जो छा थियो। वारसनि खे मुआवज़ो मिलियो। अटार्नी जनरल अदालत खे आगाही ॾिनी त जांच मुकमल कई वई आहे। हादसे में फ़ौत थियलनि जे वारसनि ऐं गाॾी मालिकनि विच में मामिलो तय थी वियो आहे। अदालत चयो आहे त असल सवाल रोडनि जी मरम्मत जो आहे। अदालत इंडस हाईवे ते हैवी ट्रैफिक ते पाबंदी लॻाई हुई। दरख़्वास्त गुज़ार चयो आहे त चीफ सेक्रेटरी जी सरबराही में जोड़ियल कमेटी खे रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾिनो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-46-0000।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 51 456 तौकीर अहमद 0306

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन

0: स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

वठणी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: इस्लामाबाद ऐं पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तेज़ बरसाति, पाणी घरनि में दाख़िल, रोड रस्ता तलाउ जो ॾेख ॾियण लॻा। बाज़ारूं पाणीअ सां भरिजी वियूं। रावलपिंडी में 24 कलाकनि दौरान 130 मिलीमीटर बरसाति रिकॉर्ड। गुजरात, नारवाल, शकरगढ़, मर्दान, सवाबी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। लीनाले में पाणी सतह में वाध सबबि घारो। खतरे जा सायरन वॼाया विया। नाले में कटेरिया वटां पाणी जी सतह में 21 फुट खां वधीक वधी वियो आहे। बरसाति सबबि हेठनि वारनि इलाइक़नि में पाणी भीजी वियो। बरसाती सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण लाइ वासा ऐं रेस्क्यू इदारनि खे अलर्ट जारी।
1: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos and much more.
0: ज़रिए अॼु पार्लियामेंट हाउस में पार्टी जे अॻवाननि ऐं अपोज़िशन लीडरनि सां मुलाक़ात कंदो। ईरान पारां छिकताण वधण जी सूरत में यूरोप में अमेरिकी फ़ौजी असासनि ते हमला करण ते ग़ौर। बरतानवी अख़बार ईरानी हुकूमत जे ज़रियनि बाबति रिपोर्ट में लिखियो आहे त ईरान छिकताण वधण जी सूरत में ॾखण ऐं ओभर यूरोप ऐं बल्गारिया समेत यूरोप जे ॿियनि इलाइक़नि में मौजूद फ़ौजी असासनि ते हमला करण लाइ ग़ौर करे रहियो आहे। अमेरिकी क़दमनि मूजिबि जवाबी कार्रवाई जी नोयत ऐं शिदत बाबति हिकमत अमली इख़्तियार कई वेंदी। गॾियल अरब इमारतनि जो ईरान सां वापारु ख़तमु करण जो ऐलान। गॾियल अरब इमारतनि जे परॾेही वज़ीर चयो आहे त फ़ैसिलो अमुन सलामती ऐं इलाक़ाई छिकताण खे नुक़सान पहुचाइण सबबि कयो वियो आहे। हुन खां अॻु गॾियल अरब इमारतनि जे दफ़ा वारे वज़ीर ईरान तरफ़ां 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर करण जो इल्ज़ाम मड़ियो हो। ईरान गॾियल अरब इमारतनि जो इल्ज़ाम रद्द कंदे छॾियो आहे। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिनि। हीउ रवैयो सुठे पाड़ेसरी जे असूलनि जे ख़िलाफ़ आहे। ईरान सां बैकडोर चैनल ज़रिए ॻाल्हियुनि जी दावा कंदड़ ट्रंप 24 कलाकनि अंदरि पंहिंजे बयान तां फिरी वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां के बि ॻाल्हियूं न पियूं थियनि ऐं नई ॻाल्हियुनि जो शेड्यूल थियल आहे। ईरानी बाज़ार इनकलाब अॻे ई बैकडोर चैनल ज़रिए राब्तनि जी तरदीद कई हुई। अमेरिकी सदर आबना हर्मुज खे अमेरिकी इलाइक़ो करार ॾियण वारो नक्शो शेयर करे छॾियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबना हर्मुज बाबति नक्शो पंहिंजे सोशल मीडिया अकाउंट सोशल ट्रुथ ते शेयर कयो। तजिया निगारनि ऐं ईरानी क़यादत पारां वॉशिंगटन जे 2 मयार ते तनक़ीद। हिकु भेरो ॿीहर फ़ौजी एक्शन खां सिफ़ारतकारीअ जो वक़्तु अची चुको आहे। असां ते दॿाउ विझण सां अमेरिका रियायत हासिल नथो करे सघे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर कालेबाफ़ चयो आहे त अमेरिका उहे रियायतूं हासिल करणु चाहे थो जेके इस्लामाबाद में मुफ़ाहमती जाज़ाशतनामे में आहिनि। पेठेक सहित पंहिंजे औक़ात खां वधीक ॻाल्हाए रहिया आहिनि। मश्करनि जी टीम मुआज़ो ई नथी ॾेखारे सघे। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज बुगटी जी अहवान सदर में मुलाक़ात। सरफराज बुगटी सदर खे बलूचिस्तान जे मजमूई सूरत हाल ते ब्रीफिंग ॾिनी। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त बलूचिस्तान में अमुन, तरक़ी ऐं अवामी फ़लाह लाइ वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतनि विच में असराइती राब्तनि जी ज़रूरत आहे। परॾेही सरपरस्तीअ में सरगर्म दहशतगर्दनि खे बलूचिस्तान जी तरक़ीअ में रंडक विझण जी हर क़ीमत अदा करणी पवंदी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारहें इल्ज़ाम हेठि 2 ॼणनि समेत 4 ॼणा क़तल। घोटकी जे घोट मलूक शेख में जवाबदार खावंद बख़्श शेख पंहिंजी ज़ाल मलूका ऐं नूर हसन शेख खे कारहें इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़तल करे फ़रार थी वियो। ठठे जे इलाइक़े जमपीर में साले घरू तकरार तां भेणवीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। घोट लाल बख़्श मंसरीअ में साहिब ॾिने मंसरी भेणवीअ इमदाद खे क़तल कयो। बदीन जे फिरदोस कॉलोनीअ में जवाबदार यूसुफ मल्ला पंहिंजी ज़ाल खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। CTD ऐं हसास इदारनि जे कराची में कार्रवाई। जश्न आज़ादी जे मौक़े ते फायरिंग जे वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ़्तार। DIG CTD कराची ग़ुलाम ज़फ़र प्रेसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त 12 अगस्त ते डिफेंस 2 में फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़त्लु कयो वियो। गिरफ़्तार थियलनि में ज़फ़र अली ऐं फराज़ सजाद शामिल आहिनि।

0: कालम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेट

वफाकी सरकार बानी पीटीआई के जेल मां इस्लामाबाद जी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फैसलो चैलेंज करे छलियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कराई वही। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार कयो वियो आहे त अदालत अबूरी मरहले में समूरियूं इस्तदाऊं जीअं जूं तीअं मंजूर करे केस जी बे बुनियादी मसले के ही खत्म करे छो। जो सुप्रीम कोर्ट के तय कयल असूलन के उबतड़ है आइन जो आर्टिकल 25 बराबरी जो हक डे तो याफ्ता कैदी के खानगी अस्पताल में इलाजी सहूलत दियण से फौजदारी इंसाफ जो समूरो निजाम मुतासर थो। अदालत के अड़े फैसले से बेन कैदियों लाए भी अड़न मुतालबन जो दरवाजो खुली वो हुकुम जारी करण का अग लागापियल धुरन के नोटिस भी न दिनों वो। अदालती फैसलो इंसाफ के असूलन के उबतड़ है तेकर इन नजरसानी कई वजें।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट ॿुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 03011961।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत

0: और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराब पर 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 03013808347।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मुख़्तलिफ़ लाइक़नि में कारे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि समेत चार ॼणा क़त्ल। घोटकी जे ॻोठु मलुक शेख में जवाबदार खावन बख़्श शेख पंहिंजी ज़ाल मलुका ऐं नूर हसन शेख खे कारे इल्ज़ाम हेठि गोलियूं हणी क़त्ल करे फ़रार थी वियो। ठठे जे इलाइक़े जंपीर में साले घरू तकरार तां भेणवीअ खे फायरिंग करे क़त्ल करे छॾियो। ॻोठु लाल बख़्श मंछरीअ में साहिब ॾिने मंछरी भेणवीअ इमदाद खे क़त्ल कयो। बदीन जी फिरदोस कॉलोनीअ में जवाबदार यूसुफ मल्ला पंहिंजी ज़ाल खे छुरियुनि जा वार करे क़त्ल कयो। कराची में सीटीडी ऐं असास इदारनि जे गरियल कार्रवाई जश्न आज़ादी जे मौके ते फायरिंग जे वाक़े में मुलविस टे दहशतगर्द गिरफ़्तार करण जी दावा DIG सीटीडी अज़हर मेसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त 12 अगस्त ते डिफेंस में हिकु ॼणे खे क़त्ल कयो वियो। वाक़े में मुलविस ज़फ़र अली फराज़ ऐं सजाद खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। कराची जे इलाइक़े सी व्यू भरिसां अपार्टमेंट जी पार्किंग में बीठल कार मां 2 ॼणनि जा लाश हथाया आहिनि। SSP ॾखण अली वाके वारे हंधि पहुतो। SSP जो चवणु आहे त लाशनि जी हालति ॾाढी ख़राब आहे। हिक जी सुञाणप असदुल्ला तौर थी आहे, ॿिए जी सुञाणप न थी सघी आहे। मामले जी वधीक जाच कई पई वञे। FIA मनी लॉन्ड्रिंग जे इल्ज़ाम हेठि सांगड़ जे अॻूणे SSP आबिद बलोच समेत टिनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे वरितो आहे। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल आबिद बलोच, अॻूणे जूनियर क्लार्क ग़ुलाम सरवर ऐं पुलिस कांस्टेबल मुमताज़ अली ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो। केस में ॼाणायो वियो आहे त जवाबदारनि मनी लॉन्ड्रिंग ऐं स्मगलिंग मां हासिल कयल रक़म मां 100 एकड़ ज़रई ज़मीन ख़रीद कई वई। ज़मीन पुलिस कांस्टेबल मुमताज़ अली जे नाले ते रजिस्टर्ड कराई वई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
4: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
5: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सेहत शी गाल साण करे हाजिर खिदमत अवां जो पेंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी। समिन जीव खुश ते जहान खुश, जीव आहे ते जहान वाहे, सेहत आहे।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592।

पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन अगुवाणनि सां मुलाकात। बिलाल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस में पार्टी इजलास खां पोइ अपोजिशन जे चेंबर में पहुची मुखालिफ़ धुर जे अगुवाणनि सां मुलाक़ात कई। मुलाकात दौरान मुल्क जी मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल, ज़रियनि मूजिबि मुस्तक़बिल में बि राब्ता जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। वफ़ाक़ी सरकार पानी पीटीआई खे जेल मां इस्लामाबाद जे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज करे छॾियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे त अदालत अबूरी मरहले में समूरियूं सज़ाऊं जीअं जो तीअं मंज़ूर करे केस जे बुनियादी मसइले खे ई ख़तम करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय कयल असूलनि जे उबतड़ आहे। आइन जो आर्टिकल 25 बराबरी जो हक़ ॾिए थो। कंहिं हिकु सज़ा याफ़्ता क़ैदी खे ख़ानगी अस्पताल में इलाज जी सहूलियत ॾियण सां फ़ौजदारी इंसाफ़ जो समूरो निज़ाम मुतासिर थींदो। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले सां ॿियनि क़ैदियुनि लाइ बि अहिड़नि मुतालबनि जो दरवाज़ो खुली वेंदो। हुकुम जारी करण खां अॻु लाॻापियल धुरियुनि खे नोटिस बि न ॾिनो वियो। अदालती फ़ैसिलो इंसाफ़ जे असूलनि जो उबतड़ आहे, तंहिं करे हुन ते नज़रसानी कई वञे।

इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बरसात। पिंडी में 136 मिलीमीटर बरसात सबब तबाही। रोड रस्ता तालाब बणजी विया। पानी घर दुकान में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह में इजाफे का पोए भर वारन इलाकन के खाली कराए पो। पंजाब की गुजरात नारोवाल शक्करगढ़ मेन इलाकन में भी बरसात। हेठाई वारन इलाकन में पानी पेजी वो।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक के फौरी तौर कराची पहुंचण ऐं आयल रिफाइनरी सां गालियन ज़रिए तेल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ क़दम खणण जी हिदायत। मुलाक़ात दौरान वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम वारे वज़ीर खे हिदायत कई त हू फौरी तौर कराची पहुची आयल रिफाइनरी सां गालियन जो अमल शुरू करे मुक़ामी तौर ते तयार थींदड़ डीज़ल जे अघनि में घटिताई लाइ ज़रूरी क़दम यकीनी बणाए। वज़ीर-ए-आज़म चयो त डीज़ल जो वॾो हिसो मुक़ामी रिफाइनरीज़ में तयार थिए थो, तंहिं करे उन जे अघनि में घटिताई लाइ पेट्रोलियम वारो वज़ीर पाण रिफाइनरी सां ॻाल्हियूं जल्द खां जल्द मुकमल करे जेसिताईं मुमकिन हुजे अवाम खे फौरी रिलीफ फराहम कयो वञे।

0: कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में इंतजामी यूनिटन सूबन बाबत बहस के मसनू कूड़ ते बदल करार दई छो। सूबन ते बहस अवामी बहस ना उन पुठियां को बो मकसद है। सूबन के नजरअंदाज करें पैंजा फैसला भरण की कोशिश मुल्क में डपेड़ पखेड़ की कोशिश है। कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन जो सेमिनार काजी जावेद जै मुल्क में आइन के मनीदड़न की गाल न बनी वने या सूरत हाल मुल्क लाए दुरुस्त ना है। बैरिस्टर यासिर शाह पाकिस्तान में इंतजामी यूनिटन सूबन बाबत बयानियों कूड़ ते बदल है। भारत समेत जिन मुल्क में सूबन जो हवालो दिनों वने तो उन्हें में वफाकियत जो निजाम ही ना है। मुल्क में बाबू सिस्टम हली रो है जो न हलो। आमिर नवाज वड़ाइस कें नव सूबो बेन हंधन से ठाए सिंध जो विराको कबूल ना है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300338569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रिक्शा खत्म थियण ताईं हुकूमत सां सहकार न कंदासीं, ज़ोर ज़बरदस्ती सां न ॻाल्हि मञी आहे ऐं न हाणे मञींदासीं। नून लीग खे आज़ाद कश्मीर जी तकरारी इलेक्शन घुर्जे त उहा खेनि मुबारक हुजे। इलाज हर कैदी जो हक़ आहे, बहितर हो त सुप्रीम कोर्ट खां हुकूमत इहो क़दम खणे हा। फ़िलहाल भुटो ज़रदारी न मनसूबनि
2: Your face now speaks 10 languages. Your dog can do podcast intros. Your meme page finally has a voice. With Avatar 4, turn any image, cartoon, anime, pet, whatever, into a talking head that actually lip syncs. No deep fakes, no uncanny valley, just audio synced magic. Content creation just leveled up. Upload, type, share. Avatar 4 is live. Go play.
1: ज़रदारी जी अपोजिशन अॻवाननि सां मुलाक़ात। फ़िलहाल भुटो ज़रदारी पार्लियामेंट हाउस में पार्टी इजलास खां पोइ अपोजिशन जे चेंबर में पहुची मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान मुल्क जी मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल, ज़रियनि मूजिबि मुस्तक़बिल में बि राब्ता जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। वफ़ाक़ी सरकार बानी पीटीआई खे जेल मां इस्लामाबाद जे शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज करे छॾियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो आहे त अदालत अबूरी मरहले में समूरियूं सदाऊं जीअं जो तीअं मंज़ूर करे केस जे बुनियादी मसइले खे ई ख़तम करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय कयल असूलनि जी उबतड़ आहे। आइन जो आर्टिकल 25 बराबरी जो हक़ ॾिए थो कंहिं हिकु सज़ा याफ़्ता क़ैदी खे ख़ानगी अस्पताल में इलाज जी सहूलियत ॾियण सां फ़ौजदारी इंसाफ़ जो समूरो निज़ाम मुतासिर थींदो। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले सां ॿियनि क़ैदियुनि लाइ बि अहिड़नि मुतालबनि जो दरवाज़ो खुली वेंदो। हुकुम जारी करण खां अॻु लाॻापियल धुरियनि खे नोटिस बि न ॾिनो वियो। अदालती फ़ैसिलो इंसाफ़ जे उसूलनि जो उबतड़ आहे, तंहिं करे हुन ते नज़रसानी कई वञे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: ये

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: माशाल्लाह फौजी पाई।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए। आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-4372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

0: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी

की सफाई और फोरी ग्लो, जल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

भारत में मुकर्रर आमदगी सफ़ीर जे वलारल कश्मीर जे हवाले से तकरारी बयान ते पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज। अमरीकी नाज़िम उमूर के परडेही ऑफिस तलब कर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए। परडेही तर्जुमान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के भारत जो हिस्सों करार दियण वो अमरीकी सफ़ीर जो बयान रद्द करे तो। जम्मू कश्मीर आलमी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाको है। तकरार जो हतमी फैसलो गड़ियल कौमन के ठहराउन कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशन मुताबिक थियण है। सफ़ीर जो गैर जिम्मेवाराना बयान अमरीका की पुरानी